0: से कोई गाना हो।
1: मुझे नहीं आता।
0: तुम्हारे गांव में कोई तो गाता होगा।
1: होली का गाना आता है।
0: चलेगा।
1: होली आई रे।
0: नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
1: दिवाली, दिवाली का गाना चलेगा?
0: चलेगा, चलेगा।
1: घर घर में दिवाली है मेरे।
0: नहीं।
1: और क्या गाऊं?
0: कोई चालू चीज गाओ। चालू चीज, चालू चीज, चालू चीज।